एक खूबसूरत विचार है आपसे शेयर करना है। खुश रहने के लिए सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं, बस जो अच्छा है उसे दिल से महसूस करना जरूरी है।

0: सुबह का सूरज जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसकी किरणें हर जगह पहुंचती हैं। वो ये नहीं देखती कि कौन सा घर बड़ा है और कौन सा छोटा। उजाला सबके लिए होता है और शायद अच्छाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी मुस्कान, हमारे अच्छे शब्द और हमारा अपनापन किसी एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रहे?
1: क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
1: स्पेशल बुके लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5 बजे

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य

0: सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं आरंभ में सुनिए ये मातृवंदना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज का विषय है उच्चारण। चिंतक श्री राजेंद्र प्रसाद।
1: बहुत पुराने जमाने में पुरुष भी सोने के आभूषण पहना करते थे। हमारे सभी देवता आभूषण पहने आज भी दिखाए जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान कानों में मकर की आकृति के कुंडल पहनते हैं, केयूर या भुजबंद पहनते हैं। उस पुराने जमाने के एक कवि ने कहा है, पुरुषों की शोभा केयूर यानी भुजबंद से नहीं होती, चंद्रमा के समान उज्जवल हारों से भी नहीं। अरे पुरुष की शोभा तो उसकी वाणी से होती है। वाणी रूपी आभूषण ही वास्तविक आभूषण है। वाग्भूषणम् भूषणम्। सुंदर वाणी की चर्चा जब होती है तो हम

0: व्याकरण के अनुसार शुद्ध भाषा और अर्थ को निखारने वाले उचित शब्दों का महत्व तो सहज ही में समझ जाते हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण पक्ष को हम भूल जाते हैं और वो है उच्चारण। खेद की बात है कि और बातें तो पुस्तकों के द्वारा सिखाई जा सकती हैं, पर उच्चारण सिर्फ सुनकर ही सीखा जा सकता है। और दुख की बात है कि बच्चों के माता पिता, पड़ोसी और यहाँ तक कि अध्यापक तक अशुद्ध उच्चारण के दोषी हैं। फिर बच्चे करें तो क्या करें। अशुद्ध उच्चारण संबंधी एक पौराणिक कथा है। एक ऋषि के पुत्र की देवराज इंद्र ने अन्याय से हत्या कर दी। ऋषि ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ का प्रभाव यह होता कि उससे इंद्र को मारने वाला जीव पैदा हो जाता। ऋषि ने पुकारा, हे इंद्र शत्रु प्रकट हो। इंद्र शत्रु का वैदिक उच्चारण दो प्रकार से हो सकता था, इंद्र शत्रु और दूसरा इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु का अर्थ होगा इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात इंद्र जिसको मार दे, और इंद्र शत्रु का अर्थ है इंद्र का शत्रु, अर्थात इंद्र को जो मार दे। भूल से ऋषि ने पहला उच्चारण किया और नतीजा यह हुआ कि वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, जिसको बड़े संघर्ष के बाद वज्र से इंद्र ने मार दिया और ऋषि की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये है उच्चारण की महिमा। एक ही साधारण सा वाक्य जो लिखने पर तो एक ही अर्थ देता, लेकिन उच्चारण भेद से अनेक अर्थ दे सकता है। एक उदाहरण लें, एक साधारण सा वाक्य है, सोहन नरेंद्र का बेटा है। इन पांच शब्दों के कम से कम चार अर्थ उच्चारण भेद से हो जाएंगे। देखिए, अर्थ पहला, सोहन नरेंद्र का बेटा है, अर्थात सिर्फ सोहन ही, मोहन नहीं, गणेश नहीं, सिर्फ सोहन ही नरेंद्र का बेटा है। अर्थ दो, सोहन नरेंद्र का बेटा है, अर्थात सोहन नरेंद्र का बेटा है, सुरेंद्र का नहीं, किसी और का नहीं। अर्थ तीन, सोहन नरेंद्र का बेटा है, अर्थात सोहन नरेंद्र का बेटा है, भतीजा या भाई नहीं। और अर्थ चार, सोहन नरेंद्र का बेटा है, अर्थात सोहन नरेंद्र का बेटा अभी है, वर्तमान में है, ऐसा नहीं कि पहले था और अब नहीं रहा। सो देखा आपने, सिर्फ उच्चारण में अलग अलग शब्दों पर बल दे देने से अलग अलग अर्थ निकल गए। कुछ लोग इसी तरह श को स करके उच्चारण बिगाड़ते हैं, जैसे शाम का शाम और शर्म को शर्म कह करके। तो दूसरे लोग स को श कर देते हैं, वे सदा नहीं कहेंगे, सदा बोलेंगे। वे वाराणसी नहीं कहेंगे, वाराणसी कहेंगे। कौशल्या न कहेंगे, कौशल्या बोलेंगे। तो कई लोग अक्षरों के नीचे बिंदु लगाने में बड़े उदार हैं, चाहे आवश्यकता हो या न हो। जैसे वे बोलेंगे, हम जूता पहनकर जौनपुर जा रहे हैं। कहां तक कहें, उच्चारण का एक पूरा विज्ञान है। गलत उच्चारण को सही करने की भी वैज्ञानिक विधियां हैं, पर इनकी कोई किताब नहीं है। जानकार से सुनकर ही सीखा जा सकता है, और सीखें क्यों, क्योंकि वाग भूषणम भूषणम।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन में चिंतक श्री राजेंद्र प्रसाद को। आज का विषय था उच्चारण। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायन स्वर है अनुराधा पौडवाल के।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायन स्वर थे अनुराधा पौडवाल के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कृषि सामग्री। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश भार्गव। आज का विषय है फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन।
1: किसान भाइयों, बदलते दौर पे खेती में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों के साथ हमारी जो खेती में पोषक तत्वों की श्रृंखला है उसका समन्वय

0: करते हुए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना भी बहुत जरूरी है। यह मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती ये आजकल सुन रहे हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है, इन सब के बीच की बात है, समन्वित खेती में पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सबसे पहले, अभी आप लोगों के खेत खाली होंगे, उन खाली खेतों में गोबर आधारित जो भी खाद है आपके पास, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, नाडेप खाद हो, परमी कंपोस्ट है, घनजीवामृत है, उसको आप खेत की आखिरी तैयारी के समय जुताई से पहले मिला दें और 5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टर के मान से मिला सकते हैं। यदि बर्मी कंपोस्ट है या घनजीवामृत है, 2 से 5 टन भी मिला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल के लिए लाभकारी परिणाम देगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई ने हरी खाद के रूप में सनई है, डेंचा है या मूंग है, उड़द की खेती की है, कहीं कहीं मूंगफली की भी खेती करते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू है या उसके जो अवशेष हैं उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। और डेंचा सनई तो मिट्टी में पलटाई करीब 25-30 दिन पर कर देते हैं, उसमें मिट्टी में जैविक जो अंश है, जीवांश है जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी वृद्धि होती है और फसल को लाभ होता है। तो ये पूरी श्रृंखला, चाहे गोबर की खाद हो, हरी खाद देना, ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की श्रृंखला में ही आते हैं। इसके बाद जब हम फसल बोने जा रहे हैं, कौन सी फसल बो रहे हैं, अनाज बाली बो रहे हैं, धान बोएंगे या मूंगफली बोएंगे, सोयाबीन बोएंगे, उसके लिए मिट्टी का परीक्षण यदि आपने कराया हुआ है तो उसके अनुसंधान रूप, यदि नहीं कराया है तो अभी भी करा सकते हैं। हमारी शिवपुरी में कई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं, वो आजकल तो कई प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो इनसे आपको जांच के उपरांत पता चल जाएगा। तभी हमको रासायनिक उर्वरक, जो हमारे DAP है, NPK है, पोटाश है, यूरिया है, सुपर है, अलग अलग श्रृंखला होती हैं, और किसान भाई DAP के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो कहूँगा आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों एक में ही आते हैं, उसका प्रचलन मिल रहा है। यदि नहीं है तो हम अलग अलग भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। तो ये समन्वित और अनुशंसित मात्रा में देना बहुत जरूरी है रासायनिक उर्वरकों का। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर इनको कहते हैं, जो दलहनी फसलों के लिए जैसे राइजोबियम है, और अनाज वाली फसलों के लिए एजिटोबैक्टर है, और धान के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको BGA कहते हैं, तो नील हरित शैवाल। तो इससे हम बीजोपचार कर रहे हैं, तो बीजोपचार के लिए करीब 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से जैव उर्वरक से उपचार कर लेते हैं तो वो बड़े लाभकारी होता है। साथ ही साथ फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इससे भी 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचार करने से जो फास्फोरस हमने पहले से दी है वो पौधों को पूरी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाती, या केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जमीन में फिक्स हो गई है, तो उसको वो घुलनशील बनाते हैं। यहाँ किसान भाइयों में एक सुझाव भी देना चाहूंगा, इन रसायनों को आपने दिया है वो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में लाभकारी के लिए जैव उर्वरकों के द्वारा उनको उपलब्ध फॉर्म में लाने के लिए आप करीब 20-25 किलो मिट्टी ले लें या रेत ले लें, उसमें जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर डाल दें और खेत की आखिरी जुताई के समय भुरकाव कर दें, तो वो बैक्टीरिया बढ़ के पूरे खेत में प्रसारित हो जाते हैं और आपकी जो जमीन है उसमें घुलनशील फॉर्म में सल्फर या जो फॉस्फोरस है या जो भी पोषक तत्व है उसको एक लाभकारी परिणाम देते हैं। इसके साथ किसान भाई, जब हम फसल बोते हैं तो बोते समय हमको आधी मात्रा अनुशंसा की अनुरूप उर्वरकों की देनी चाहिए, और बची हुई शेष मात्रा, जैसे हमारी जो धान वाली फसल है तो खड़ी फसल पे दी जाती है, लेकिन जब दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दलहनी फसल की जो जड़ों में पाए जाते हैं, तो वो अपने आप सोते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और फसल को लाभ कराते हैं। आवश्यकता ये है कि हमको जो इनका उपचार करके एक टीकाकरण करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप देखें, ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली में एक बार मैं फिर किसान भाइयों से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, इससे आपकी फसल की लागत भी कम होगी और उर्वरक की जो रासायनिक निर्भरता है वो भी कम होगी। इसके लिए आप गोबर की खाद, चाहे वो नाडेप खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो, घनजीवामृत हो, इसका उपयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। यदि आपने जो जायद में फसल लगाई हुई है, जैसे मूंग की फसल लगाई है, तो कुछ आपने फली की तोड़ाई कर ली हो, बाकी शेष फसल को आप मिट्टी में मिला सकते हैं, तो वो मिट्टी को पोषण देती है और मिट्टी की तासीर एकदम से बदलाव होती है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं उनका भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी सुधार में, और जो पोषक तत्व दिए जा चुके हैं उनको उपलब्ध कराने में। इस प्रकार आप जो अनुशंसाएं हैं उनके अनुरूप आप आगामी समय में खरीफ फसलों में पोषक तत्व की प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसलों से भरपूर उत्पादन होगा, फसल की लागत कम होगी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिकी, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। आज का विषय था फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको दे रहे हैं जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। विषय होगा सांप्रदायिक सद्भाव। 7:20 पर सुनिएगा वार्ता में विष्णु प्रभाकर की कृतियों में सामाजिक चेतना, वार्ताकार श्री जाहिद खान से। 7:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:45 पर आप सुन पाएंगे प्रातःकालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत। श्रोताओं, सुबह 9:00 से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम लोकरंग में आज आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और बद्री व्यास की आवाज में मनमोहक लोकगीत। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज सुबह 10:00 से आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा सुगम संगीत और 10:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। सुबह 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। श्रोताओं, दोपहर 1:00 सुनिएगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। शाम 5:00 आपको सुनवाएंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। शाम 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्वच्छ शौचालयों का करें प्रयोग और बाल श्रम रोकथाम और हमारा दायित्व। साथ ही भेंट वार्ता में जानकारी देंगे वार्ताकार डॉक्टर नीरज सिंह कुशवा। शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल विषय पर भेंट करता होंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। रात्रि 8:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये थी हमारी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीयपरीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करणप्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीयपरीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करणक्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1 भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य चतुर्विंशति दिनाङ्क

यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य

0: संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम एपीएमसी परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते जीएफएस गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय

0: युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 108
2: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए, प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव का तात्पर्य आपसी प्रेम और सद्भाव या भाईचारे का भाव होता है। एक देश में रहने वाले हम सभी नागरिक आपस में भाई ही तो हैं। धर्म, जाति, मजहब की संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलकर राष्ट्रहित और चिंतन की बात सोचते हुए जब हम सब मिलकर राष्ट्र के विकास और तरक्की में सहयोग करते हैं, तभी सही मायने में हम सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण निर्मित करते हैं। एक राष्ट्र तभी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है जब वहां आंतरिक शांति और सद्भाव का वातावरण हो। भारत के नागरिक होने के नाते हमें इसमें अपना योगदान, अपना सहयोग अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म एवं जाति के आधार पर यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत विविधताओं में एकता का देश है। इसके अंदर भौतिक विषमताओं के साथ साथ भाषा, धर्म, वर्ण, रूप रंग, खान पान और आचार विचारों में भी विषमता पाई जाती है, किंतु फिर भी भारत एक सुसंगठित राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक की भावना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया वह एक भावना है जो राष्ट्र में, देश के लोगों में भाईचारा

व राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। सांप्रदायिक सद्भावना से राष्ट्र सशक्त और संगठित रहता है। राष्ट्र में एकता बनी रहती है। विभिन्न धर्म संप्रदाय जातियों के बावजूद भी भारत एक सुसंगठित राष्ट्र है। हमारे देश में उपलब्ध जितनी विविधताएं हैं शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलें। फिर भी भारत एक सुसंगठित राष्ट्र है क्योंकि हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाती है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। हमारी एकता को बनाए रखती है। हमें सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म विशेष के क्यों ना हों, क्योंकि वास्तव में कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी धर्म एक समान हैं। अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। श्रोताओं, लघु वार्ता में आज का विषय था सांप्रदायिक सद्भाव। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। निवेश और प्रौद्योगिकी विकास पर रहेगा फोकस। आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू। प्रदेश भर के 5.5 लाख से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी, अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा का कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार की ओर से शोक संदेश देने कतर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और MyGOV पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सहभागिता कर प्रतिभावान विद्यार्थियों

0: विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने परिश्रम के बल पर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं।
1: प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभागियों को आपने ये मौका दिया। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुड़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति एमपीएमसी के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह दहेगाम एपीएमसी बोर्ड के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तकनीकी विकास यात्रा पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का आदान प्रदान भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सौर बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अच्छी खबर में प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन पर इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे की ये रिपोर्ट।
3: पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को एक जन भागीदारी का रूप दे दिया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया।
4: इंदौर में अब तक लगभग 60,000 सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं और 53,000 आवेदकों को लगभग 414 करोड़ रुपए सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में अब तक कुल 219 मेगावाट क्षमता के संयंत्र कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2,62,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
3: इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी विमल फौजी ने योजना को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली योजना बताते हुए कहा।
5: देपालपुर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब किसान इस ओर अग्रसित होते जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने अपने खेतों पे लगाए, लेकिन अभी अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगा रहे हैं।
3: वहीं इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले योजना के हितग्राही रूपेंद्र सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण योजना बताते हैं।
6: हमने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। योजना के तहत हमें सरकार से अनुदान मिला है। इसके साथ ही हमारे घर में बिजली पर होने वाले खर्च में भारी कमी आई है।
3: मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। उन्होंने पार्टी के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। इससे पहले टिकट कटने पर समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने व्यापारियों को

0: भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर व्यापारियों के और उद्यमियों के साथ खड़ी है। श्री सिलावट रविवार को कैट द्वारा आयोजित व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए हर 3 माह में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और मंत्री ने सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। भोपाल के सिंधु भवन में कल आदिवासी जैन जी फेस्ट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र की आदिवासी रैपर माही जी की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगवार ने आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर देने पर जोर दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सुर्खी में जल्द शुरू होने वाली देहरा बांध परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 23,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1,82,00,000 रुपए फ्रीज कराए हैं। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया था। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिखाकर भरोसा जीता और जांच में सामने आया कि ये गिरोह विदेश से संचालित हो रहा है। रकम को छिपाने के लिए 12 लेयर में 19,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश में करीब 60% हिस्से में मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के एयरपोर्ट परिसर में कल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हिस्सा लिया। मंदसौर के सांदीपनी विद्यालय में भी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। आगरमालवा के साथ नीमच के 6,878 पशुपालकों को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रेरित किया जाएगा। छतरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और रीवा के डाकघर संभाग में PLI और RPLI व्यवसाय के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट चयन के लिए 27 से 31 जुलाई तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वार्ता। श्रोताओं, वार्ताकार श्री जाहिद खान से सुनिए वार्ता में विष्णु प्रभाकर की कृतियों में सामाजिक चेतना।
1: विष्णु प्रभाकर एक गांधीवादी लेखक, सिर पर गांधी टोपी और शरीर पर खादी का कुर्ता पाजामा बास्केट उनकी स्थायी पहचान थे। वह सादगी की जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में गांधीवादी जीवन मूल्यों को अपनाया और उनके आदर्शों पर चले, बल्कि अपनी रचनाओं में भी इस विचारधारा को प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार की तरह विष्णु प्रभाकर ने भी अपने साहित्य से गांधी चिंतन को ठोस व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उनका संपूर्ण साहित्य सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। राष्ट्र प्रेम और मानवतावादी दृष्टिकोण उनके साहित्य का मूल स्रोत है। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी गद्य शिल्पी थे। उन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को व्यापक रूप से समृद्ध किया। आज भी पाठक उनके साहित्य से प्रेरणा लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का साहित्य लोगों में सामाजिक चेतना जगाने का काम करता है। खास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने खूब साहित्य रचा, उनकी समस्याओं एवं परेशानियों को समझा और उन्हें अपनी आवाज़ दी। अपनी कहानी कला के बारे में विष्णु प्रभाकर का कहना था, मैं ना आदर्शों से बंधा हूँ और ना सिद्धांतों से, बस भोगे हुए यथार्थ की पृष्ठभूमि में उस उद्दात की खोज में चलता चला आ रहा हूँ। मेरे पास वह कला भले ही ना हो जो कहानी को कहानी बनाती है, पर झूठ का सहारा मैंने कभी नहीं लिया। 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले स्थित मीरापुर गांव में जन्मे विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम विष्णु गुप्त था। उन्हें बचपन से ही लेखन में रुचि थी। विष्णु, विष्णुगुप्त, विष्णुदत्त और प्रेम बंधु आदि छद्म नामों से वह कहानियाँ लिखते थे। साल 1934 में उन्होंने हिंदी साहित्य की प्रभाकर की परीक्षा पास की और इसके बाद वह अपने नाम के साथ प्रभाकर लगाने लगे। साल 1931 में महज 19 साल की उम्र में विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी दिवाली के दिन लाहौर के हिंदी मिलाप में प्रकाशित हो गई थी। लेकिन उनका नियमित लेखन 1934 से शुरू हुआ और इसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महान कथाकार प्रेमचंद ने अपने अखबार और साहित्यिक पत्रिका हंस में उनकी कहानियाँ प्रकाशित की। यही नहीं, उस दौर की हिंदी साहित्य की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं अलंकार, विशाल भारत, सरस्वती, माया, सुधा, माधुरी, कहानी, धर्मयुग आदि में विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ छपी और उन पर खूब चर्चा हुई। विष्णु प्रभाकर ने गद्य की सभी विधाओं में लिखा, लेकिन वह मूल रूप से कहानीकार ही थे। उन्होंने तकरीबन 300 कहानियाँ लिखी। धरती अब भी घूम रही है, मुरब्बी, जज का फैसला, अधूरी कहानी, मेरा वतन, पुल टूटने से पहले, अभाव, ठेका, हिमालय की कहानियाँ उनकी कालजयी कहानियाँ हैं। विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक कहानियों में शैली और शिल्प की दृष्टि से जैनेन्द्र का काफी प्रभाव था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी भाषा एवं कहानी शिल्प को बदला और अपनी खुद की एक अलग ही शैली निर्मित की जो पाठकों को बेहद पसंद आई। विष्णु प्रभाकर की बहुचर्चित कहानी धरती अब भी घूम रही है समाज और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता को बड़े ही खूबसूरती से उकेरती है। बच्चों के पात्रों के जरिए उन्होंने व्यवस्था पर कड़े प्रहार किए हैं। इस कहानी ने विष्णु प्रभाकर को काफी लोकप्रियता दिलाई। कहानी का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। विष्णु प्रभाकर ने हिंदू मुस्लिम संबंधों पर कई प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। भारत का विभाजन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। सांप्रदायिक दंगों से दो संप्रदायों के बीच जो अविश्वास और दुराग्रह पैदा हुए, इन समस्याओं की शिनाख्त और इनका निराकरण वे अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। अधूरी कहानी, मेरा बेटा, तांगे वाला, मेरा वतन आदि कहानियों में उन्होंने बंटवारे के बाद के समाज और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। ये कहानियाँ इतनी भावनात्मक हैं कि नफरत भरे दिलों में भी बदलाव ला दें। नारी जिंदगी की व्यवस्था एवं उसके अंतर्द्वंद पर विष्णु प्रभाकर ने कई कहानियाँ लिखी। सच मैं सुंदर हूँ, एक और दुराचारिणी, एक मौत समंदर किनारे, हिमालय की बेटी, शरीर से परे, क्रांति, एक और कुंती, ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं। इन कहानियों की नायिका जीवन की परेशानियों के लिए अपने भाग्य को जिम्मेदार मानकर जिंदगी से नहीं हार जाती, बल्कि संघर्ष और एक नई सोच के साथ उन विकराल परिस्थितियों से मुकाबला करती है। महिलाओं की स्वतंत्रता के भी वह पक्षधर थे। नारी नियति की बहुआयामी त्रासदी विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का केंद्रीय तत्व है। महिला समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सहानुभूति इन उपन्यासों में स्पष्ट दिखाई देती है। यही नहीं, वर्गीय भिन्नता, मध्यवर्गीय समाज की अनैतिकता तथा आर्थिक हवाब का अचूक चित्रण भी इन उपन्यासों में नजर आता है। उपन्यास अर्धनारीश्वर में वे पाठकों को स्त्री उत्पीड़न के विविध पक्षों से साक्षात्कार करवाते हैं। इस उपन्यास की केंद्रीय लाइन यह है कि स्त्री और पुरुष विवाहित जीवन में परस्पर पूरक हैं, लेकिन स्त्री के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाने पर उसकी सजा स्त्री को ही भुगतना होती है। स्त्री का दुख और उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। अर्धनारीश्वर के लेखन में विष्णु प्रभाकर ने संवाद, विवेचन, पत्र, डायरी, विविध शैलियों का कलात्मक इस्तेमाल किया है। तट के बंधन उपन्यास में उन्होंने देश विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की विभीषिका से पीड़ित स्त्रियों की व्यथा कथा को बेहद संवेदनशीलता से बुना है। संकल्प और कोई तो उपन्यास भी महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। इन उपन्यासों के महिला पात्र परिस्थितियों से हार कर अपने हथियार नहीं डाल देते, बल्कि उनसे जूझ कर समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बनाते हैं। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की तकरीबन सभी विधाओं, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, बाल कहानियां, बाल नाटक, अनुवाद, विचार निबंध आदि में जमकर लिखा। उनकी किताबों की संख्या 100 से ऊपर है। देश विदेश की कई भाषाओं

में इन किताबों का अनुवाद हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी जो 3 खंडों में है। जिंदगी की शुरुआत में कुछ साल सरकारी नौकरी करने के बाद वह हमेशा मसीह जीवी ही रहे। पूर्णकालिक लेखक के तौर पर उन्होंने काम किया। सिर्फ लेखन भर से उन्होंने अपना और अपने परिवार का गुजारा किया। विष्णु प्रभाकर ने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर नाट्य निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। रेडियो में काम करने के दौरान उन्होंने कई रूपक, एकांकी और नाटक लिखे, जिनका रेडियो से तो प्रसारण हुआ ही, बाद में किताब के रूप में प्रकाशित भी हुए। स्कूल कॉलेजों की पाठ्य पुस्तकों में उन्हें शामिल किया गया। नया कश्मीर और लाल किला विष्णु प्रभाकर के ना भुलाए जाने वाले रूपक और स्वराज की नींव, युगे युगे क्रांति, जज का फैसला, श्वेत कमल, युग संधि, प्रकाश और परछाई, नव प्रभात, कुहासा और किरण आदि चर्चित एकांकी नाटक हैं। इन रूपक और एकांकियों में उन्होंने अनेक विषयों, जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्त्रियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उभारा। उनकी एकांकी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और श्रोताओं पाठकों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने का काम करती हैं। विष्णु प्रभाकर ने जैनेन्द्र, यशपाल, अस्क, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन की पीढ़ी से लेकर कमलेश्वर, अमरकांत, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और बाद की पीढ़ी, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, शेखर जोशी, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया और काशीनाथ सिंह के साथ लेखन किया और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। विष्णु प्रभाकर का एक महत्वपूर्ण कार्य बंगला भाषा के चर्चित रचनाकार शरत चंद चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा लिखना है। यह उपन्यास परक जीवनी है जिसे उन्होंने 14 साल के गहन शोध के बाद लिखा था। यह जीवनी इतिहास और उपन्यास का मिश्रण है। शरत चंद के जीवन और लेखन से जुड़े तथ्यों को उन्होंने रोचक भाषा और शैली में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि यह जीवनी उपन्यास होने का आवास और रस देती है। आवारा मसीहा ने विष्णु प्रभाकर को खूब लोकप्रियता दिलाई। आज भी वे इस किताब के लिए जाने जाते हैं। हिंदी में इस स्तर की प्रामाणिक जीवनियां बहुत कम लिखी गई हैं। आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद के जीवन संघर्षों को 3 खंडों, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत में बांटा है। इस जीवनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने शरत चंद चट्टोपाध्याय की कहानियों और उपन्यासों की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। वे उनके कथा साहित्य के अंता सूत्रों को भी तलाशते हैं। शरत चंद चट्टोपाध्याय के अलावा विष्णु प्रभाकर ने और भी शिखर व्यक्तित्वों पर छोटी छोटी जीवनियां लिखी। इनमें प्रमुख हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधीवादी काका कालेकर, शहीद भगत सिंह, अहिल्याबाई होलकर, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, बंकिम चंद चटर्जी और कमाल पासा। यह जीवनियां प्रौढ़ों को शिक्षित करने की दृष्टि से सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं, जिससे वे आसानी से इनसे परिचित और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को ग्रहण कर सकें। विष्णु प्रभाकर ने बच्चों के लिए भी काफी बाल साहित्य लिखा। वह बाल साहित्य को बहुत गंभीरता से लेते थे और इसे महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि बच्चों के बाल मन पर इसका गहरा असर होता है। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए इस तरह के साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। विष्णु प्रभाकर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्होंने उनके लिए ढेरों मनोरंजक कहानियां और नाटक लिखे, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ वह उनको शिक्षा भी देते थे। बच्चों की पत्रिका पराग में उनके बाल उपन्यास गजनंदन लाल का धारावाहिक प्रकाशन हुआ, जिसे बाल पाठकों के बीच खासी लोकप्रियता मिली। कहीं कुछ नहीं बदला, सबसे सुंदर लड़की, धन्य है आपकी परख, बाबूजी बरात में, अब्दुल्ला आदि उनकी प्रमुख बाल कहानियां हैं। वहीं सुनो कहानी के 2 खंडों में उनकी कई मजेदार कहानियां संकलित हैं। बाल नाटकों के लेखन में भी उनका कोई जवाब नहीं था। जादू की गाय, दादा की कचहरी, गजानंद लाल के कारनामे, कुंती के बेटे विष्णु प्रभाकर के चर्चित नाटक हैं। हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए विष्णु प्रभाकर कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किए गए। उपन्यास अर्ध नारीश्वर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। पाब्लो नेरुदा सम्मान, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें मिले कुछ प्रमुख सम्मान हैं। विष्णु प्रभाकर को एक लंबी जिंदगानी मिली। उन्होंने समय के एक लंबे कालखंड को देखा, उसे आत्मसात किया और उसे प्रभावी ढंग से अपने लेखन में उतारा। अपने 7 दशक के लेखन में कई अविस्मरणीय कहानियाँ
और पात्र दिए जिन्हें भूल

0: मिलना नामुमकिन है। 97 साल जीने के बाद 11 अप्रैल 2009 को उन्होंने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता विष्णु प्रभाकर की कृतियों में सामाजिक तत्व, विषय पर वार्ताकार श्री जाहिद खान। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

नमस्कार, शिवपुरी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा अभिनंदन। महात्मा गांधी ने कहा है, डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है। दस दिन और बारिश नहीं होने पर प्रभावित होगी खरीफ की बोनी। जिले में इस बार बारिश का कम होना किसानों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। 1 जून से 12 जुलाई तक जिले में औसत बारिश का महज 25% ही पानी बरसा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तक सिर्फ 158 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 481 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। लगातार कम बारिश और उमस भरी गर्मी से खेतों में नमी खत्म होती जा रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अगर अगले 10 दिन में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ की फसल बुरी तरह प्रभावित होगी। जिन किसानों ने खाद और बीज पर कर्ज लेकर बुवाई की है, उनके लिए चिंता और भी गहरी है। कृषि विभाग ने इस वर्ष खरीफ फसलों का लक्ष्य 4,20,000 हेक्टेयर रखा है। इसमें से अभी तक लगभग 2,67,000 हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है, यानी करीब 65% रकबे में बीज बुवाई की जा चुकी है। सबसे ज्यादा बुवाई मक्का की हुई है। इसके अलावा धान, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई भी किसानों ने की है। 4 दिन पहले हल्की बारिश हुई थी, जिससे खेतों में थोड़ी नमी बनी हुई है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह नमी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जिन किसानों के पास ट्यूबवेल और नहर का पानी है, वो तो किसी तरह फसल बचाने में कामयाब होंगे, लेकिन 60% किसान इस तरह हैं जो सिर्फ बारिश पर निर्भर है। ऐसे में 10 दिन और बारिश नहीं हुई तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा और खाद व बीज दोनों ही बेकार हो जाएंगे। आईटीआई में छात्राओं को प्रशिक्षण शुल्क में मिलेगी 25% की छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026 से सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क 6,090 रुपये के स्थान पर 4,755 रुपये होगा, जिससे छात्राओं को 1,335 रुपये की राहत मिलेगी। राज्य मंत्री गौतम टेटवार ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक बेटियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार व स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।

एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने शनिवार को एसडीओपी कार्यालय में अधीनस्थ थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरियादियों की शिकायतों का समय सीमा में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में भामौरकला थाना प्रभारी संजीव राजपूत, पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। एसडीओपी ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरण का

गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, हाल ही में दुकानों के ताले तोड़कर हुई चोरी की घटनाओं की भी समीक्षा की गई। एसडीओपी ने चोरी के मामलों के शीघ्र खुलासे और अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संदेश के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण, लगाए गए 51 पौधे। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद शिवपुरी द्वारा शनिवार को मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधरोपण महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत परिषद के सदस्यों, चिकित्सकों और छात्र छात्राओं ने 51 औषधीय एवं छायादार पौधों का पौधरोपण किया तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर इला गुजारिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भारत विकास परिषद के इस अभियान की सराहना करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर मुकेश गुर्जर, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, डॉक्टर अमित गुप्ता एवं अर्पित बंसल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधरोपण करना नहीं बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित करना भी है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 को, 19 को होगी 11,000 की इनामी शतरंज प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को है। इस अवसर पर आर के मेमोरियल चेस एकेडमी शुपरी के तत्वाधान में सेकेंड ओपन लिटिल चैंप्स चेस प्रतियोगिता 19 जुलाई को आयोजित की जा रही है। आयोजन सचिव श्री पवन वशिष्ठ और जिला खेल युवा कल्याण अधिकारी एवं टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर के खरे ने बताया कि यह प्रतियोगिता स्विस पद्धति आधारित 6 चक्रों में संपन्न की जाएगी। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आयु 21 वर्ष रखी गई है। प्रथम 3 खिलाड़ियों को कैश प्राइज और ट्रॉफी, चौथे और पांचवें को कैश प्राइज प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में जैसे वेस्ट गर्ल्स अंडर 17, अंडर 14, अंडर 11, अंडर 8 फिजिकल चैलेंज को कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रातः कालीन दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शुपरी। आकाशवाणी का ये शुपरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया इन कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही

0: समय पर अलग होगा। उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन

0: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: अगली प्रस्तुति सुनिए लता मंगेशकर की आवाज।

रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन

0: करके यूपीआई से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: लोकरंग में लीजिए, अब सुनिए अनिल दंडोतिया की आवाज में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात शिक्षा की। बजरंगगढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की कक्षा 5 में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं जनकल्याण की। मुख्यमंत्री जनकल्याण 2.0 योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों राज्य के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। गुना जिले के 239 श्रमिक परिवारों के खातों में भी 5,36,00,000 रुपए सीधे भेजे गए। बमोरी के भौरा में करीब 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से करीब 225 गांवों के 2,00,000 से अधिक लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली मिलेगी। गुना जिले के मौसम का हाल भी लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई तक जिले में औसतन 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चांचौड़ा, कुंभराज और मकसूदनगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। इसी बीच समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल भी हुई। कुंभराज के बिरियाई गांव में रात्रि चौपाल और रोजगार सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। 11 युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर सौंपे गए। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों से जुड़ी आपत्तियों के निराकरण के लिए 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक विभिन्न बैठकों का आयोजन जिले में किया जाएगा। संबंधित आवेदिकाओं को अलग से सूचना भेजी जाएगी और सभी को तय समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। खेती किसानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 अगस्त तक की जाएगी। जिले में इसके लिए 4 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपनी उपज बेच सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश से बचाव की सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सांप काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू इलाज न करें। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें। समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है। शहर की यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सड़क दुर्घटनाएं रोकने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए भारी माल वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही ऐसे वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। दिन के समय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता के लिए स्कूल 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। विजेता टीम राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी और सफल टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान जिले में 1,67,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा बीते दिनों पिलाई गई, जिसके लिए 1,513 पोलियो बूथ बनाए गए थे। स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी दौरान सिंघाड़ी रोड पर आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बीना गुना रुठियाई मेमू एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। इस नई ट्रेन से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले में युवा संगम कार्यक्रम में बीते दिनों 269 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 191 युवाओं को निजी कंपनियों ने रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। और अंत में एक जरूरी अपील। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी खबर, फोटो या वीडियो को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। गुना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे

0: गुना जिले की चिट्ठी, आलेख रोहित गोस्वामी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म माय नेम इज़ खान का गीत। गीत निरंजन का था और इसे संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म मौसम का गीत, हंसराज हंस की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

अनजाना अनजानी इस फिल्म का गीत सुनिए राहत फ़तेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में। गीत विशाल ददलानी का है और संगीत है विशाल शेखर का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और येसुदास की, और फिल्म का नाम है अलग अलग।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आरती मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म मासूम का गीत। बोल गुलजार के हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

दिल एक मंदिर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। श्री मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जिसका प्रसारण भारतीय समयानुसार 12:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इसमें आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम पूरी करते हैं और पहला पत्र शामिल कर रहे हैं रेवा खेल।

रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। तीसरी कसम फिल्म का गीत मुकेश का गाया हुआ। शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं, शंकर जयकिशन की धुन है।

अगला गीत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मुकेश ने गाया है। फिल्म का नाम है धर्म करम। सुनना पसंद किया है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। कांचल पुणे से महेश हजारे, मितांशु हजारे, आदित्य हजारे। इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और उनके परिवार के सदस्य।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं उपाध्याय नगर। देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा की। मेंढकी रोड से रांगू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत की। राजाबाग नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन की। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। कंवर कॉलोनी बड़वाह से श्री प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति श्रीमानी और शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली की। घंटा चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। बहू बेगम फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। साहिर के बोल हैं और रोशन की धुन।

अगले गीत की फरमाइश शामिल कर रहे हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा और लभी श्रीवास्तव की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर की, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की पसंद है, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की, सुनना पसंद किया है उपकार फिल्म का गीत मन्ना डे का गाया हुआ, इंदिवर ने गीत लिखा है, कल्याण जी आनंद जी की धुन है।

मन्ना डे के गाए फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खाका सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और MyGov पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अब से कुछ देर में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी दोपहर करीब 2:30 बजे नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन कराने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दतिया जा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने रसोई और घर को जितना हो सके केमिकल फ्री बनाना चाहिए। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की बजाय ताज़ा घर का भोजन खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी या ताज़े फलों का रस अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। मौसमी फल और हरी सब्जियों को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। मैदा, अत्यधिक चीनी और जंक फूड के सेवन से बचें। भोजन बनाने के लिए ताज़ी भोजन सामग्री और पारंपरिक मसालों का उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म भोजन रखने से बचें। स्टील, कांच और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। वक्त हो गया है भेंट वार्ता का। आइए अब सुनवाते हैं आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष कछभिया जी की बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: ऋषि जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को।
2: जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब ये आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में।
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है।
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामानसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्थि होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है। आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा।
2: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये अत्यधिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
2: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनएस में इंट्रोड्यूस करते हैं
1: जी।
2: चौथे नंबर पर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहाँ घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं
1: जी।
2: पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चूर्ण को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में, और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है
1: जी। जी, तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
2: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देख रेख में ही कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
1: जी जी जी। अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
2: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में, और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी। हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफ़ी हद तक हम चीज़ों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
2: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारे प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए, और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिंस को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
2: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद एक चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। क्योंकि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी। जी
1: जी जी, जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
2: बिल्कुल, आपका सवाल

0: बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते
1: जी
0: हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्चुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं।
1: जी
0: अगर ज़्यादा देर हो गई है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज़, तो फिर सर्जरी भी की जाती है, जिसमें चार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, बिना डॉक्टर के परामर्श के स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है। ये दिखती आसान है, पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं, और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है। तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इन्हेंस हुई है।
1: जी
0: तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं, और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं, और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है, तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है, और जितना समय ज़्यादा गवा देता है, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है।
1: जी
0: तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें, और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें, तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी।
1: जी
0: इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज के दौर में तो इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह, जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं,
1: जी
0: जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं, या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है, जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गंवा देते हैं,
1: जी
0: और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं, और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें। हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं, और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है, और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीज़ें मेंशन है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं, अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
1: जी
0: उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें, तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजभिये की ये बातचीत सुनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का, और इसी क्रम में आज का विषय है कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसके माध्यम से रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बिना सीधे संपर्क के प्राप्त की जा सकती है। इसका पर्पस हेल्थ सर्विसेज को अधिक सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और सुलभ बनाना है। इस टेक्नोलॉजी में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, स्मार्ट उपकरण और वायरलेस तकनीक का उपयोग करके रोगी की निगरानी, जांच और परामर्श किया जाता है। इसमें डॉक्टर को मरीज से हर बार मिलने की आवश्यकता भी नहीं होती। वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। वेयरेबल डिवाइसेस कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी में स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड भी आते हैं, जो हृदय गति, रक्त में ऑक्सीजन और नींद और शारीरिक गतिविधियों की निगरानी करते हैं। संपर्क रहित थर्मामीटर में बिना छुए शरीर का तापमान का पता लगाया जा सकता है और घर बैठे रोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी भी की जाती है। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का। प्राकृतिक चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करें, तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें, बारिश में भीगने पर शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, फंगस, संक्रमण या कोई समस्या लगातार बनी रहे तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। बादलों के दिनों में भी बाहर जाते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें। अपनाएं ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आपको रखें स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान।

0: आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। समय है एक अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक सूचना है आपके लिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से बचें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 अथवा प्रासंगिक विधि प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीराजी मंडोर के गाए मालवी लोकगीत। यह है निर्गुण भजन।

पीराजी मंडोर के गाए इस निर्गुण भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की इस रचना के साथ।

अविनाश त्रिपाठी के गाए भजन आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए सूरदास जी की रचना

0: सूरदास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। ये प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है एक अंतराल का।
1: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
2: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
1: 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया नया दौर फिल्म का गीत है। ओपी नैयर ने धुन बनाई है साहिर के बोल।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: मन्ना दे और साथियों का गाया फिल्म श्री 420 का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और जीसीसी निवेश पर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, निवेशक और नीति विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा

0: इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास अनुसंधान उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री

0: सेक्स सॉर्टेड सिमेन के बारे में जानकारी देंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जुलाई तक चलने वाले 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा और केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालकों परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। इससे राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा मिलती है। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इनमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया मौसम का सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, थार और अलीराजपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में नगर पालिका द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम करना है। मंडला जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जबलपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने जबलपुर पुणे वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जबलपुर से इटारसी के बीच औचक निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा कल आगरमालवा जिले के कारण में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

0: न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा

0: और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: शैलेंद्र का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं, बंदनी फिल्म का यह गीत है, स्वर और संगीत एस डी बर्मन का।
1: ओ मेरे माझी

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आर डी बर्मन की धुन थी और आनंद बख्शी ने गीत लिखा था। आनंद फिल्म का ये गीत है, मन्ना डे ने गाया है, योगेश ने गीत लिखा है, सलिल चौधरी की धुन है।

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी।
1: मन्ना डे के गाए फिल्म आनंद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया और लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र महिला क्रिकेट इस मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत है। 457 रन के लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बनाए थे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:40 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा शाम 6:45 का। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में रात 10:30 पर मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूर्य धनाश्री आप सुनेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्रामसभा कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा लोक रंग। ये थी जानकारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01 और 35 सेकंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और मायगव पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमी कंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रही। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।
1: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण और युवा दायित्व विषय पर और साथ ही चर्चा करेंगे डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के बारे में। और दोस्तों, साथ ही हमारे युवा साथियों के लिए होगी रोजगार सूचना भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हमारे घर के नल में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? न खाना बन पाएगा, न नहाना होगा और न ही रोज़मर्रा के दूसरे काम होंगे। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 97% पानी खारा है। पीने योग्य मीठा पानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें आवश्यकता है जल संरक्षण की। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जल संरक्षण सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जल संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, किसी भी समाज में बदलाव की शुरुआत अक्सर युवाओं से होती है। आज का युवा नई सोच रखता है, नई तकनीक अपनाता है और लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है। अगर युवा चाहें तो अपने घर, कॉलेज और आसपास के लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को जानकारी देकर और पानी के

महत्व के बारे में लोगों को बताकर। इससे लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। अगर हर युवा यह तय कर ले कि वह अपने घर में पानी की बर्बादी नहीं होने देगा तो लाखों परिवारों की आदतें बदल सकती हैं। अगर हर छात्र अपने कॉलेज में जल संरक्षण का संदेश फैलाए तो पूरा परिसर जागरूक हो सकता है। यानी एक जागरूक युवा हजारों लोगों को प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर हम आज पानी बचाएंगे तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा।

इसका मतलब बहुत आसान है। डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से दूरी बनाना। और डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म यानी ऐसी यात्रा जहां कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाकर प्रकृति, परिवार और स्वयं के साथ समय बिताया जाए। मतलब कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेके असली दुनिया और प्रकृति से दोबारा जुड़ने का मौका। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम घूमने कहीं भी जाते हैं, हमारा आधा समय अच्छी फ़ोटो लेने और उसे पोस्ट करने में ही निकल जाता है। कई बार हम खूबसूरत जगहों का आनंद लेने के बजाय सिर्फ कैमरे की स्क्रीन ही देखते रह जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी गांव, जंगल, नदी किनारे या शांत प्राकृतिक जगह पर घूमने गए हैं। सुबह पक्षियों की आवाज़ से आपकी नींद खुलती है, मोबाइल की घंटी नहीं प्रकृति की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आप योग करते हैं, टहलते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनका खान पान और संस्कृति जानते हैं, शाम को डूबते सूरज को देखते हैं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन से नहीं अपनी आँखों से। यानी ये एक ऐसा सफ़र है जो जहाँ नो नेटवर्क जोन ही आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन बन जाता है। और दोस्तों, यही है डिजिटल डिटॉक्स का असली अनुभव। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए कोई महंगे रिसॉर्ट में जाना ही ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप अपने शहर के पास किसी पार्क, झील, जंगल, गांव या पहाड़ी क्षेत्र में एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, पचमढ़ी के घने जंगल, सतपुड़ा के शांत नज़ारे या अमरकंटक की वादियों में जब भी आप जाते हैं और फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल देते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, बस यही है डिजिटल डिटॉक्स टूरिज़्म। दोस्तों, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज के युवाओं पर पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर का दबाव पहले से ही कहीं ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहें तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी रचनात्मक सोच विकसित होती है, समय का सही उपयोग होता है और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक समय बिता सकते हैं। और यही कारण है कि आज कई लोग अपनी छुट्टियों में डिजिटल डिटॉक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, तकनीक हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उससे दूर नहीं जाना है बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। याद रखिए, छुट्टियां सिर्फ नई जगह देखने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक अवसर भी होती हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ITI, डिप्लोमा या संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए rrbapply.gov.in तथा rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का युववाणी कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई

0: जानकारी भी जरूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाजत।
1: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
7: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
10: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
8: सफर में
7: आपके साथ
8: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। फिल्म का नाम है आपकी कसम।

और अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब हम आपको सुनवाते हैं अमर पीर अमर प्रेम फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

मेरे हमसफर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी देर बाद

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और माइकअप पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जाँच दल SIC से जाँच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग
3: कार्यक्रम।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति

0: ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one-off test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day four. For India, Sneha Rana took 4 wickets, while Sayali Sadghare, Kranti Gaur and Deepthi Sharma bagged 2 wickets each. India had declared the second innings at 341 for 7 yesterday at the stroke of tea, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at the Lord's. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 kilometers per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Supreme Court today directed the Special Investigation Team or SIT constituted by the UP government to submit a status report on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. The court also issued notice to the Union Government, the UP Government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petition seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joy Malia Bagchi and V. Mohan heard the petitions. The Supreme Court today stayed a Madras High Court order which directed the Tamil Nadu government to ensure that no cow or calf is slaughtered in the state. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta passed the order while hearing a plea filed by the state government challenging a May 27 order of the High Court. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month

0: last year. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, will begin tomorrow at Bharat Mandapam in New Delhi. The four-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment, and international trade. It will bring together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups, and technology providers. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran's state news agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al Salem and Ahmed Al Jaber Air Bases in Kuwait. And benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session. The Sensex edged up 47 points to close at 77,616. Nifty added 4 points to settle at 24,211. And that is the end of this news bulletin.
1: Akashwani Samachar Seva Prabhag ki Prastuti Vishleshan.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गगनयान मिशन की, जो भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन सफल परीक्षणों ने भारत को अपने पहले स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशन के और करीब पहुंचा दिया है। क्रू मॉड्यूल वही हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे, इसलिए इसकी प्रत्येक प्रणाली का पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में हुए परीक्षणों में समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को स्वतः सीधा करने वाली प्रणाली, सर्विस मॉड्यूल से उसके सुरक्षित अलग करने की व्यवस्था और पैराशूट खुलने से पहले एपेक्स कवर को अलग करने वाली प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये तीनों प्रणालियां अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन श्रोताओं, ये विषय केवल एक अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। गगनयान मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भर तकनीक, उच्च स्तरीय विनिर्माण, नवाचार और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। ये मिशन केवल अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास नहीं, बल्कि देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक तकनीकों, उद्योगों और अनुसंधान क्षमताओं का भी प्रमाण है। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि गगनयान मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और हाल ही में हुए ये परीक्षण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 6 दशक से अधिक पुराना है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों तक इसरो ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन सभी अभियानों में अंतरिक्षयान तो भेजे गए, मानव नहीं। मानव अंतरिक्ष उड़ान किसी भी देश के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सबसे जटिल उपलब्धियों में गिनी जाती है। इसमें केवल रॉकेट तैयार करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली, सुरक्षित पुनः प्रवेश, पैराशूट प्रणाली, समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग और बचाव व्यवस्था जैसी अनेक तकनीकों का सफल होना भी आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने गगनयान मिशन की शुरुआत की। 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की।
3: मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तान ही लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए।
2: इस मिशन का उद्देश्य भारत में विकसित स्वदेशी तकनीक के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन किसी भी मानव मिशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा। हाल ही में इसी दिशा में 3 महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। आइए विस्तार से इसे समझते हैं।
4: गगनयान मिशन के अंतर्गत इसरो ने हाल ही में क्रू मॉड्यूल से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण प्रणालियों का सफल परीक्षण किया। इन परीक्षणों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष से लौटते समय प्रत्येक सुरक्षा प्रणाली निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करे। पहला परीक्षण था क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम का। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटकर समुद्र में उतरता है तब समुद्री लहरों के कारण उसके उलट जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रणाली मॉड्यूल को स्वतः सीधा कर देती है। ये तकनीक कोल्ड गैस पर आधारित है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके सफल परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि आपात स्थिति में भी क्रू मॉड्यूल सुरक्षित स्थिति में आ सकता है। दूसरा परीक्षण था अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म। ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करती है। सर्विस मॉड्यूल मिशन के दौरान ऊर्जा और प्रणोदन उपलब्ध कराता है जबकि क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले दोनों मॉड्यूल का सही समय पर अलग होना अनिवार्य होता है। इसरो ने सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल के माध्यम से इस प्रणाली का परीक्षण किया और ये सफलतापूर्वक निर्धारित मानकों पर खरी उतरी। तीसरा परीक्षण था एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम का। एपेक्स कवर पूरे मिशन के दौरान पैराशूट प्रणाली की सुरक्षा करता है। पृथ्वी पर उतरने से ठीक पहले इसे अलग किया जाता है ताकि पैराशूट समय पर खुल सके और क्रू मॉड्यूल नियंत्रित गति से सुरक्षित समुद्र में उतर सके। इस परीक्षण में ये भी प्रमाणित हुआ कि एपेक्स कवर के अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचना पूरी तरह स्थिर रहती है। इन तीनों सफल परीक्षणों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गगनयान मिशन की कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जागृति शर्मा।
2: गगनयान मिशन में हाल ही में हुए इन सफल परीक्षणों का महत्व केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं है। इन्हें समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि इस मिशन की अब तक की यात्रा कैसी रही है और भारत किस चरण पर पहुंच चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में।
5: भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2018 को हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसकी घोषणा की। इसके बाद दिसंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना को मंजूरी दी। साल 2023 में इसरो ने TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोंस्ट्रेशन 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन में क्रू स्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ये प्रदर्शित किया गया कि यदि प्रक्षेपण के समय किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से सुरक्षित अलग कर अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद मिशन के विभिन्न चरणों में पैराशूट प्रणाली, रिकवरी ऑपरेशन, जीवन रक्षक प्रणाली, प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य कई उप प्रणालियों का लगातार परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्र में रिकवरी अभ्यास भी किए गए ताकि वास्तविक मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। हाल ही में न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान और आदित्य L1 जैसी सफलताओं के बाद अब गगनयान भारत की अगली बड़ी वैज्ञानिक छलांग है।
3: भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर।

0: इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है।
1: इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2026 में इसरो ने क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 और महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनमें क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम शामिल हैं।
2: श्रोताओं, इस मिशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों यानी MSME के बीच सहयोग को भी नई दिशा दी है। गगनयान के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपकरण और प्रणालियां भारत में ही विकसित की जा रही हैं, जिससे देश में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन विकास भी है। गगनयान नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM शिक्षा की ओर प्रेरित करेगा। श्रोताओं, भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक सबसे जटिल और संवेदनशील तकनीकों में भी लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। ये उपलब्धि केवल अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसके माध्यम से देश में उन्नत विनिर्माण, उच्च तकनीक, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया, विधिसम्मतया, युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्च न्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्च न्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमि मन्दिरस्य दानविषये आरोपित दुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषण दलाय अन्वेषण विषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्ड राज्यस्य श्रमिकाणां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्र कार्य संपादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारत जापान देशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विक सुरक्षा परिदृश्ये व्यापक विमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यानिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य निर्णीतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष, विधिसम्मत, युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्च न्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्च न्यायालयस्य सह निर्णयः निरस्तः, येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्यां उक्तं यत् ये भारतीय नागरिकतायाः अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्यायप्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उतवा प्रक्रिया विलंबस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मत प्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिका

0: नमस्कार एंड वेलकम टू मार्केट मंत्रा टुडे बी
1: लता मंगेशकर को फिल्म कटी पतंग में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है, महबूबा फिल्म का नाम है, संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है युवाओं की आशाओं और विचारों को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए। आलेख वीणा सबलो पाठक, वाचन स्वर राणा शाहिद। हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व जनसंख्या दिवस के आयोजन की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहल पर हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मनाए गए 5 बिलियन डे से मिली थी, जब यह अनुमान लगाया गया कि विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई है। इसके बाद ही इस बात की जरूरत महसूस की गई कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के प्रभावों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा और जन जागरूकता जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या केवल संख्या का विषय नहीं है, बल्कि यह संसाधनों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से भी सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए यह दिवस समाज, सरकार और प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या केवल लोगों की संख्या नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र की क्षमता, चुनौतियां और भविष्य की दिशा का दर्पण होती हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किसी थीम पर आधारित होता है। इस साल की थीम है युवाओं की आशाओं और विचारों को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए। यह युवाओं को एकजुट करने और उनके जीवन विकल्पों और संबंधों को समझने एवं समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह थीम लाइक्स, चॉइसेस एंड फ्यूचर्स, व्हाट यंग पीपल वांट एंड व्हाट शेप्स देयर डिसीजंस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पेरेंटहुड रिपोर्ट पर आधारित है। यह 73 देशों में 1,00,000 से अधिक इंटरनेट से जुड़े 18 से 39 साल की आयु के वयस्कों के विचारों पर आधारित है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुँचने में सैकड़ों हजारों साल लगे, लेकिन फिर महज 200 साल में यह आश्चर्यजनक तरीके से 7 गुना बढ़ गई। साल 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई और नवंबर 2022 आते आते यह 8 अरब तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या वर्ष 2030 तक लगभग 8.5 अरब और साल 2050 तक 9.7 अरब पहुंचने का अनुमान है। कई विकसित देशों में जन्म दर घट रही है और वहां वृद्ध जनसंख्या की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह लगभग 147 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादियों में भी शामिल है। यदि इस विशाल युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, तो यही जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। इनमें परिवार नियोजन सेवाएं, मिशन परिवार विकास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, महिला शिक्षा को बढ़ावा तथा संस्थागत प्रसव जैसे कार्यक्रम प्रमुख है। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी जनसंख्या स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य भी गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। जनसंख्या वृद्धि योजनाबद्ध और संतुलित होगी तो संसाधनों का न्याय संगत उपयोग संभव होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रह सकेगी। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी जनसंख्या की संख्या में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में निहित होती है। स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सशक्त नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रतनेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बड़वानी से, जहां खरीफ सीजन के लिए अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% है। पेश है बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट।
3: पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में खरीफ का सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% से अधिक है। कृषि विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह में 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा करें तो जिले में फसल के पैटर्न में बदलाव साफ नजर आ रहा है। जिले के किसान अब परंपरागत कपास और धान जैसी फसलों की तुलना में मक्का की खेती को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। वर्ष 2024 में जिले में मक्के का रकबा जहाँ 87,611 हेक्टेयर था, वो इस वर्ष बढ़कर 1,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंच गया है। कृषि विभाग के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में जिले में मक्के की फसल के रकबे में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण लागत का कम आना, सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम पानी लगना तथा बाजार में फसल का बेहतर दाम मिलना है। जिन कारणों से जिले के किसान अब मक्के की फसल का रकबा बढ़ाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
2: हमारी दूसरी खबर है छिंदवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को धार्मिक क्षेत्रों के भ्रमण करने का मौका मिल रहा है। बीते दिनों जिले के 196 तीर्थयात्रियों को गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
4: मध्य प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के बुजुर्गों को एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। गत दिवस शाम जब सूरज ढल रहा था, तब छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 196 तीर्थ यात्रियों का जत्था असम के गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना हुआ। बुजुर्गों के चेहरे पर आस्था की चमक और जीवन के इस पड़ाव पर तीर्थ करने का संतोष साफ देखा जा रहा सकता था। बुजुर्गों को सफर में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रेन में उनके साथ 4 शासकीय कर्मचारियों को बतौर गाइड भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
2: अगली खबर है अशोकनगर से, जहां साइबर ठगी से सावधानियों को लेकर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
5: साइबर ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अशोकनगर पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकालकर नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया गया। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह अवगत कराना है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी स्वयं को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कुरियर

0: कंपनी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि अथवा सरकारी संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल हैंग किए जा रहे हैं, जबकि डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश, पार्ट टाइम जॉब, KYC अपडेट, बिजली बिल, लॉटरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग एवं फर्जी APK फाइल के माध्यम से भी ठगी की जा रही है। साइबर अपराधियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता एवं सतर्कता है। यदि प्रत्येक नागरिक ऑनलाइन लेन देन करते समय आवश्यक सावधानी अपनाए और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक अथवा संदेश पर विश्वास न करे तो अधिकांश साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं भोपाल की तरफ, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले की सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता ताहिर खान की यह रिपोर्ट।
2: भोपाल के सतगढ़ी क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क आकर लेगा। पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर देश और प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
3: कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए, मैं घोषणा करता हूँ इस पूरे क्षेत्र के लिए।
2: उन्होंने कहा कि
3: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। अभी हमने मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर देश के दुश्मनों से निपटने के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
1: हमारी अगली खबर है बालाघाट से, जहां बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए डायरिया रोको अभियान के तहत गाँव में हैंड पंपों का सुधार और पेयजल स्रोतों का क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
4: मेरा नाम BL उइके, प्रभारी कार्यपालन यंत्री बालाघाट। शासन के निर्देश अनुसार और हमारे विभाग के द्वारा जो जल स्रोत हैं इनके क्लोरीनेशन कार्य के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और इसमें सतत हमारे जो जल स्रोत है लगभग 1066 योजनाएं हैं और 22020 हैंडपंप है। इन सभी जल स्रोतों में अक्सर बारिश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कारण जल जनित बीमारियां होती, इनके क्लोरीनेशन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो हमारे इन सभी का क्लोरीनेशन कार्य बालाघाट जिले में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी।
1: अब हम चलते हैं दमोह जिले की तरफ, जहां खरीफ की फसल बुआई का कार्य शुरू हो गया है। किसानों को खाद की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ई टोकन के माध्यम से खाद उपलब्ध करा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे दमोह से हमारे संवाददाता अनिल जैन।
6: रुक रुक कर हो रही बारिश जिसमें किसान खरीफ की फसलों की बोनी कर सके, इसके लिए जिले में खाद उपलब्ध कराया गया है। अभी जिले में लगभग 14,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसे डबल्ला केंद्रों, सहकारी समितियों और मार्कफेड के गोदामों में रखा गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आकाशवाणी को बताया।
7: खरीफ के बोनी के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उन्हें सही खाद मिले, सही बीज मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, सही दाम पर मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो के विक्रेता हैं खाद बीज की निरीक्षण कराया जा रहा है। अभी तक 38 दुकानों का निरीक्षण कराया गया है, जिसमें से 14 में अनियमितता पाई जाने के कारण 10 के विक्रय प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 1 पर FIR दर्ज की जा चुकी है और 3 पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा

0: रही है। इस तरह से लगातार इस पर नजर रख के मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को कोई असुविधा ना हो। साथ ही हमारे जिले में आज की स्थिति में 14,000 MT खाद उपलब्ध है, पर्याप्त यूरिया, DAP, NPK सभी तरह के खाद उपलब्ध है। जो भी हमारे किसान भाई खाद लेना चाहें वो अपना ई विकास पोर्टल से टोकन प्राप्त करके खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि वो पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है वो अपना खाद प्राप्त कर लें। मत्स्य शासन द्वारा उनको 0 ऋण पर 1 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है खाद लेने के लिए, वो उसका उपयोग करें। आगे की फसल के लिए भी यदि आपको आवश्यकता है तो अभी से आप ले सकते हैं। हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में DAP, यूरिया और अन्य सभी तरह की खाद उपलब्ध है।
1: किसानों को बलराम ऐप या पोर्टल के माध्यम से ई टोकन जनरेट कर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की हमारी अगली खबर है बैतूल से, जहां बैतूल का गाजरिया आम को GI टैग प्राप्त हो गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
3: मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाते हुए एक साथ 12 उद्यान की फसलों के लिए GI टैग हासिल करने में सफलता हासिल की है। देश में ये पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिला है। इसमें बैतूल का गाजरिया आम भी शामिल है। आम किस्म गाजरिया जिले की लोकप्रिय किस्म है। फलों की सुगंध अनानास जैसी होती है एवं गूदा गाजर के समान होने के कारण इसे गाजरिया आम कहते हैं। आम को GI टैग प्राप्त हो गया है, जिससे जिले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी एवं किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। यह मुख्यतः विकासखंड बैतूल, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर एवं चिचोली में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन्हीं विकास खंडों में क्लस्टर बनाकर क्षेत्र विस्तार की कार्य योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के आय को 2 गुना बढ़ाने के लिए उनसे उद्यानिकी फसलों की खेती से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
2: हमारी अगली खबर है भिंड जिले से, जहां उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी दे रहे हैं भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा।
4: भिंड जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण डाइट भिंड में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर भिंड एवं मुख्य कार्यपालाधिकारी जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक का मार्गदर्शन रहा। इस दौरान डाइट प्राचार आनंद शर्मा, प्रशिक्षण प्रभारी डाइट संदीप सिंह कुशवाहा, जितेन सिंह भदौरिया और जिला सह समन्वयक अशोक भैया, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक, ब्लॉक सह समन्वयक व ब्लॉक अकादमिक समन्वयक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक सिंह पवैया एवं डाइट प्रशिक्षण प्रभारी संदीप सिंह कुशवाहा द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 में असाक्षर व्यक्तियों के सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग एवं असाक्षर संबंधी अन्य गतिविधियों के सफल संचालन के निर्देश उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक भैया और ब्लॉक सह समन्वयक MT द्वारा भिंड जिले के सभी साक्षरता से संबंधित आंकड़े PPT के माध्यम से प्रस्तुत किए गए और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त निर्देश के अनुरूप PPT को प्रोजेक्टर की मदद से सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया। प्रत्येक विकास खंड में अक्षर साथियों और शिक्षक की मदद से प्रत्येक घर के असाक्षर व्यक्तियों का ऑनलाइन ऑफलाइन 100% सर्वे कार्य कराया जाना सुनिश्चित हुआ। सर्वे कार्य 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर NILP ऐप पर असाक्षरों की

0: समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग।

0: म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास

0: तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

पहले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर आज किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत आज रात 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात 8:15 पर और रात 10। रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10:30 होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिएगा मुन्ने खां का सारंगी वादन राग पूरिया धनाश्री। ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, और अब सुनिए कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, सुरमई सवेरा। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम पेश करेंगे भूपिंदर और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें, शब्द सागर। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 होगा। इसमें कल सुनिए परिचर्चा लोक गाथाओं का उद्भव एवं विस्तार। प्रतिभागी होंगे सर्वश्री कैलाश चंद्र पंत, वसंत निर्गुणे और डॉक्टर महेश चंद्र शांडिल्य। 10 सुनिए जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर आप सुनेंगे 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल आप सुनेंगे अजित सिंह का वीणा वादन राग बैरागी भैरव। प्रसारण का समय सुबह 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। प्रसारण समय है दिन में 12 और 2:30 पर। 12:30 होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें कल सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1:00। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:45 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे इंदौर केंद्र का योगदान होंगे। दिन में 2:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। शाम 5:33, शाम 6:30, रात 8:15 और रात 10:00 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां होगा रात 9:30 बजे, इसमें कल सुनिए आबशारे गजल। राग रजनी, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में कल रात 10:30 बजे आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संदूर वादन राग मालकॉन्स। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 बजे पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, इसमें कल सुनिए डॉक्टर प्रवीण कुमार बर्डे के साथ की गई भेंटवार्ता, फल बगीचों में समसामयिक कार्य। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने भरा पर्चा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। और मॉनसून की रफ्तार धीमी, 22 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार, 16 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा तकनीक और नवाचार के सहारे नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1,229 नए रोजगार सृजित होंगे।
5: कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को GCC सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
4: इस दौरान लीड इंडिया फॉर गूगल प्ले और MPSDDC के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना स्थित सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मिथ सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन

0: की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माईगव पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने आज बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि 18 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में शहडोल जिले के 7912 पशुपालकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। उधर नर्मदापुरम जिले में 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, केसला विकासखंड के 11595 पशुपालक परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अशोकनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। स्टेशन के नवनिर्मित स्वरूप का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सोमवार यानी आज अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पत्रकार संघ ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम संबोधित एक मांग पत्र DRM को सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशोकनगर को इंदौर और नई दिल्ली से सीधी रेल सेवा के जरिए जोड़ने की रही। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विभाग को पूर्व में समय सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन मिले थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1,00,000 रुपए तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में मानसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया

सिस्टम सक्रिय हो सकता है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले चार दिनों से मॉनसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे बारिश का दौर थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर सहित तमाम जिलों में अलीराजपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। मंडला जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला योजना भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनहित से जुड़े मामलों, समय सीमा के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और 18 जुलाई को खान शामली वार्ड में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

भैया कार्यक्रम चौपाल में आप सभी को स्वागत है। और आज हम सबसे पहले एक ऐसी सरकारी योजना की बात कराते हैं जो हर गरीब किसान भैया, मजदूर, छोटे दुकानदार और हर आदमी के परिवार के लाने बहुत काम की है। योजना को नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो साथियों, जिंदगी को कोनो भरोसा नहीं है, कब का हो जाए को नहीं जानत। ऐसे समय में कहूँ परिवार के कमाए वाले सदस्य के संगे कौन अनहोनी हो जाए तो घर चलाओ बहुत मुश्किल हो जाओ थे। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना परिवार काजे आर्थिक सहायता देते हैं। कैसे भैया कि ये बहुत अच्छी योजना है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक जीवन बीमा योजना है और जो योजना के तहत मान चलो कोनो बीमा धारक की कोनो वजह से मृत्यु हो जाए, आप परिवार में नामित व्यक्ति का जे 2,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलत है। चाहे बनाओ भैया बहनों कोनो भी जुड़ सकत है, 18 साल से 50 साल तक के कोनो व्यक्ति जो उनके पास बचत बैंक खाता है वो योजना से जुड़ सकते हैं। भैया खाते में प्रीमियम कटवे के लायक राशि जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया के प्रीमियम की। तो भैया बहनों सोचो कि अकेले 436 रुपये साल भर में देवे से 2,00,000 रुपये तक को जीवन बीमा, मतलब जो है कि एक दिन को खर्चा करीब 1.5-2 रुपया बैठत है। और एक छोटी रकम में परिवार को बड़ो सहारा अपन का जो मिल जाऊ थे। भैया योजना को सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीमा धारक की मौत हो जाए तो परिवार के सदस्यों का जो 2,00,000 रुपये तक मिलते हैं हमें। और ये रकम बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चा, खेती बाड़ी या दूसरी कोनो जरूरत पे भी बहुत मददगार साबित होते हैं। और अब अपन जैसे बात करें मान चलो जो योजना में कैसे जुड़े, तो ये तो बहुत आसान है। अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को फार्म भरें और नामित व्यक्ति को भी नाम लिखें। और नामित व्यक्ति का मतलब जो होता है भैया कि जैसे मान चलो

0: पूरा पैसा या बाद में जो भी पैसा मिले थे वो कौन कार्य मिले थे, तो वह अपन नामित व्यक्ति कहते हैं। तो वह नामित व्यक्ति को नाम लिखो भी बहुत ही जरूरी है। और भैया बैंक खाते में प्रीमियम कटवे की अनुमति अपन का आज देना पड़ता है जामा भैया। और भी चीज़ से अपन का आज बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से भी जो सुविधा मिल जाऊ थे। तो भैया एक बात और है कि जे बैंक में दो तरह की योजना चल रही है, एक जीवन ज्योति योजना है, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो अपन बताते हैं। और एक और जो योजना है सुरक्षा वाली, दुर्घटना होने पे, आंशिक दुर्घटना होने पे, अपाय होने पे पैसा मिलाते हैं। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं, आप जो समझ के इनको फार्म भरें। आगे भैया चर्चा तो अपन और भी करेंगे, जहाँ से पहले एक जरूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भैया बहनों, अभी आपने संदेश सुने और आज एक और विषय पे हम बढ़िया चर्चा करो चाह रहे हैं, आपसे जानकारी देना चाह रहे हैं, बाल श्रम रोकथाम और हमाओ दायित्व। भैया अपन देखते हैं कि अपने आसपास पास छोटे मोड़ा मोड़ी जौन होते हैं, बिनके छोटे किलवे कुंदवी के दिन होते हैं, पर वे बचपन से ही काम में लग जाते हैं। कछु परिवार की आर्थिक स्थिति से, कछु मजबूरन, कछु शौक शौक में, कछु ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं या उनकी वो खुद तो आराम कराते हैं और काम पे बच्चों को भी जाते हैं। तो भैया बहनों, हम यही कहेंगे कि बच्चे भगवान को सबसे सुंदर उपहार हैं। बच्चन के हाथ में किताब, कॉफ़ी, पेंसिल और खिलौने अच्छे लगाते हैं, ना कि ईंट, फावड़ा, हथौड़ी और भारी बोझ। हर बच्चा पढ़े लिखे, खेले कूदे और अपने सपने पूरे करे, यही एक अच्छे समाज की पहचान है। पर आज भी हम कई जगह देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काजे होटलन में, ढावन पे, चाय की दुकान में, गैराज में, खेतन में, कारखाने में और घरन में काम करत देखते हैं। कुल मिला के भैया यही बाल श्रम है और समाज के लाने ये बहुत बड़ी चिंता को विषय है। बाल श्रम अकेले बच्चन को बचपन नहीं छीनत है, बिनको भविष्य अंधकार में धकेल देते हैं। जोन बच्चा आज स्कूल नहीं जा पाते है, वो कल अच्छे रोजगार, अच्छे जीवन, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी से वंचित रह जाते हैं। भैया सरकार ने बच्चन की रक्षा की खातिर भी ऐसे कई कानून बनाए हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चन से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। 14 से 18 साल तक के किशोरन से खतरनाक काम कराना प्रतिबंधित है और हरेक बच्चा के काज शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के अधिकारी हैं। भैया बहनों सोचो, आप सोचें कि अगर हम आपसे कहें कि बचपन काज स्कूल भेज, आप बच्चन काज स्कूल भेजाते हैं तो दूसरे की बच्चन से काम काय कराए थे, तो मतलब यही है कि हम आप सोचें कि अपन तो अपने बच्चन काज स्कूल भेज रहे हैं और दूसरे के बच्चन से काम कराए हैं। ऐसा नहीं, हर बच्चा काज अपन समान अवसर दें, हर बच्चों समान अवसर को हकदार है। अपने सभी को जो दायित्व बना था कि हम कौन छोटे मामणियन का जाए, बच्चन का जाए मजदूरी कर देखें तो वह प्रोत्साहित ना करें, बल्कि ऐसा करने अपन है कि दुकान, होटल या कोनो भी जगह छोटे बच्चन को मजदूरी कर देखें तो वह प्रोत्साहित ना करें, तो वह दुकान या होटल या कोनो

जगह वाले मजदूर का रद्द देखे तो मालिक को समझाएं कि जी गलत बात है, आप बच्चन से मजदूरी करा रहे हैं, ऐसा काम करा रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित विभाग चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जाके सूचना अपन दे सकते हैं। हालांकि भैया बाल श्रम के कई वजह हैं, अपन देखा था कि गरीबी, अशिक्षा, परिवार की आर्थिक परेशानी, जागरूकता की कमी और लोगों को लालच, और कई बार परिवार मजबूरी में भी बच्चन का आज काम पे भेज देते हैं। पर भैया ऐसी स्थिति में समान और सरकार को दोनों को जो में समाज और सरकार दोनों को सहयोग बहुत ज़रूरी है। भैया माता पिता से भी निवेदन है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने बच्चन की पढ़ाई ना छुड़ाएं। आज की शिक्षा उनके कल का उज्जवल भविष्य है, तो बच्चन को पूरा ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई को ध्यान रखें। उन्हें अब उनकी उम्र खेले कूद भी और पढ़वे की है, तो वही काम उनसे करन दें। हर माता पिता भले ही खुद मजदूरी कर ले, कछु कर ले, कैसे ही पेट पाल ले, पर बच्चन को उनको जीवन बचपन में ही निकरन दें, ना कि मजदूरी में और असुरक्षित कामन में। और अपन देखा था भैया के वे ऐसे काम करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, तो वे नशे के आदि भी हो जाते हैं। वे बचपन से ही नशे में पड़ जाते हैं, तो आगे चल के और परेशानी को सबब बन जाते हैं। तो ऐसा कतई बिल्कुल न करें भैया, उनके भविष्य की चिंता हम सभी की जिम्मेदारी है। भैया हम एक लोकगीत सुनवा चाह रहे हैं, बाकी पहले अपन चर्चा और करेंगे।

0: भैया आपने सुना होगा जो लोकगीत। और भैया रोजिना हम आपको एक ना एक भेंट वार्ता लेके आते हैं, तो आज ही भेंट वार्ता के क्रम में हम सुनवाते हैं आपको शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। और जहाँ हमारे वार्ताकार हैं नीरज सिंह कुशवा और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। और जो भेंट वार्ता हम पुनः प्रसारण कर रहे हैं, तो सुने आप भैया जो भेंट वार्ता।
1: किसान श्रोता नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जो बातचीत सुनवाने जा रहे हैं उस बातचीत से आप अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं, जो सरकार का लक्ष्य है कि किसान की दुगनी इनकम। विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। ये मॉडल किस तरह से क्रियान्वित होंगे, कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं और कृषि वानिकी में इनका लाभ कैसे मिलेगा, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिक श्री नीरज कुमार कुशवाहा जी हैं। सर, आपका सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है। और जो विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल, क्या है, थोड़ा सा विषय को बताएं, क्योंकि आम व्यक्ति को एकदम मॉडल सुनकर कुछ सैंपल लगते हैं कि वो हैं, या क्या कहना चाहते हैं आप?
2: कृषि वानिकी एक पद्धति है जिसमें कृषि के फसलों के साथ साथ हमें चारे के लिए, रेशे के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए या लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए या फल वृक्षों को साथ में लेते हैं, जिससे कि कृषक बंधुओं को एक अतिरिक्त आय मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में कृषक बंधु देते हैं उस कुछ प्रजातियों के वृक्षों में ये प्राकृतिक रूप से ये व्यवस्था है कि वो नाइट्रोजन को जमीन में स्थलीकृत कर देते हैं। इसके अलावा जो कटाव हो रहा है हमारी मिट्टी का उसको भी रोकते हैं, और जो टेम्परेचर तापमान जो जमीन का गर्मियों के समय में बढ़ जाता है या सर्दियों के समय में जब पाले की समस्या आती है उसको भी उसके रोकथाम के लिए। तो मॉडल्स का मतलब है कि किसान की जरूरत के आधार पर हम ऐसे मॉडल या इस प्रकार की पद्धति को वहां पर अपनाते हैं, लगाते हैं, जिससे कि उसको उसकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हों और उससे अतिरिक्त आय उसको उपलब्ध हो सके।
1: कुशवाहा जी, जैसे कोई किसान हमारा कृषि का काम कर रहा है, उसने रबी है तो गेहूं चना लगाया है, खरीफ है तो अन्य फसलें लगाई है, तो ये तो एक इस तरह आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि रबी और खरीफ दोनों में समानांतर रूप से काम करेगा, तो कृषि अपनी जगह पे चलती रहेगी और ये अलग जगह पर यानी कि खेत के किनारे या किसी दूसरे हिस्से में जहां आप अभी बताएंगे वहां पर इसका हम इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, कुछ इसी तरह की बात?

0: है।
1: जी नहीं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना चाहूंगा। इसमें देखिए तीन प्रकार से वृक्षारोपण किया जा सकता है। एक होता है कि जैसे मेड़ हमारी खाली पड़ी हुई है, हमको उनका उपयोग करना है, तो हम जो वृक्षारोपण ले रहे हैं उनको मेड़ों पर लेना है, तो मेड़ों से हमको आय होगी। इसके अलावा जो यदि हम आपकी खेती करना चाहते हैं वर्ष पर्यंत जो भी आप फसल लेना चाह रहे हैं, तो उसमें गैप देते हुए मतलब एक अनुपात में जो उस वृक्ष को चाहिए उतनी स्पेस देते हुए जिसके बीच में हमारी फसलें भी हो सकें वर्ष पर्यंत और वृक्ष खड़ा रहे, क्योंकि वृक्ष जो है वो बहुवर्षीय होता है
2: जी,
1: तो वो हमेशा लगा रहेगा। हमारी जो फसलें होती हैं वो मौसम की होती हैं, जैसे खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, तो वो हिसाब से कटती रहती हैं। उसमें जो हमारे कृषि के क्रियाकलाप हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन वृक्ष हमारे बहुवर्षीय होते हैं। एक होता है अगर आप डेंस प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब कि घना प्लांटेशन जिसके बीच में छाया बहुत अधिक होगी, तो उसमें कुछ खास किस्म की हम फसलें ही ले पाते हैं क्योंकि छाया अधिक होती है। ये तीन प्रकार से वृक्षारोपण हमको इसमें किया जाता है।
2: अब बताएं सर कि मॉडल के तौर पर कौन कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिनसे लाभ होगा और किसान को अतिरिक्त आमदनी।
1: जी, किसान बंधुओं को सबसे पहले कृषि वानिकी पद्धति अपनाने के पहले एक D&D सर्वे कर लेना चाहिए। D&D सर्वे से मतलब है डायग्नोसिस डिजाइन कर लेना चाहिए, मतलब कि वो अपनी जरूरतों को जो उसको चाहिए इसके अलावा जो उसके संसाधन है इनको देखते हुए ही वृक्षारोपण कृषि वानिकी का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, क्योंकि वृक्ष जो है एक बहुवर्षीय फसल है या घटक है, तो यदि आपने एक बार वृक्षारोपण कर दिया तो अब आप उसको हटाएंगे तो उसमें आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका समय लगेगा। इसलिए इसमें वृक्ष की प्रजाति, वृक्ष का चयन और अपनी जरूरतें और संसाधनों का आकलन कर लेना चाहिए।
2: कौन कौन से वृक्षों को शिवपुरी जिले में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रमुखता देनी चाहिए?
1: मैं घटक वाइज बताना चाहूंगा। यदि किसान भाई हमारे मेड़ों को अगर फेंसिंग के लिए परेशान है कि हम कैसे उसमें तार बारी लगाएं या चेन लिंक जाली लगाएं, मवेशियों का प्रकोप है, जंगली जानवरों का प्रकोप है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपनी मेड़ों पर यदि बांस की कतार उसके बीच में करौंदा लगाएं, क्योंकि हमारे शिवपुरी जिले में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा टमाटर के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, और जिसके लिए ज्यादातर वो स्टैगिंग जो मेथड होती है जिसमें दूसरी तरफ दोनों तरफ आप बांस बल्ली का प्रयोग करके तार के सहारे से उसको खड़ा करते हैं टमाटर को, तो वो हर तीसरे वर्ष तक वो चौथे वर्ष तक वो बांस खराब हो जाता है। और जितना भी बांस हमारे शिवपुरी जिले में आ रहा है वो विभिन्न जिलों से आ रहा है, जैसे बालाघाट, सिवनी, सागर, दमोह, इन जिलों से आ रहा है, तो उतना उत्पादन बांस का हमारे शिवपुरी जिले में हो नहीं रहा है और जरूरत ज्यादा है। अगर कृषक भाई हमारे मेड़ों पर, अपने खेत की मेड़ों पर बांस की कतार लगा लेते हैं, बीच में करौंदा लगा देते हैं, तो पांचवें वर्ष में वो हर वर्ष अपना बांस का उत्पादन ले सकते हैं। काटते जाएंगे उनको बांस बल्लियां प्राप्त होती जाएंगी
2: और बेचते भी जाएंगे।
1: जी हाँ, यदि जरूरत उनकी है तो वो भी पूरी हो जाएगी अगर वो टमाटर के उत्पादक हैं, तो यदि नहीं है तो वो अपने किसी किसान बंधु को जिले में कहीं भी बेच सकते हैं, जिसे दोनों तरफा फायदा होगा। आपकी बागड़ भी तैयार हो जाएगी, आपको एक अतिरिक्त आय भी मिल जाएगी, और जो किसान बंधु टमाटर की खेती करता है उसको दूर से लाने में जो अतिरिक्त पैसा परिवहन में लगता है वो कम लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा, हो सकता है वो आपके गांव का ही।
2: और करौंदे से भी आपको इनकम बीच में
1: जी करौंदे से भी आपको मिलेगी। इसके अलावा निचले स्तर पे अगर आप पेरिनियल ग्रासेस घास लगा सके तो वो आपको चारे के लिए भी आपके मवेशियों को प्राप्त हो सकती है, जैसे कि हाइब्रिड नेपियर बाजरा लगा सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा मेड़ों पर आप अरहर भी बो सकते हैं, तो जिससे कि आपकी एक ऐसी सुंदर जीवित बागड़ जिसको लाइव फेंस कहते हैं वो तैयार हो जाएगी, तो मवेशियों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप खेत के बीच में वृक्षारोपण करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वर्ष पर्यंत तो उस पर खेती करता रहूं और वृक्षों से अगर आमदनी होती रहे, तो उसके लिए यदि आप फलदार वृक्ष का चयन करते हैं तो कृषि शिवपुरी के परिवेश में आप सहजन का वृक्षारोपण कर सकते हैं, कटहल का कर सकते हैं, आम, सीताफल, अनार, आंवला, नींबू, बेर, बेल, ये सारे आप वृक्षारोपण यहाँ पर कर सकते हैं। बस विशेषतः आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो वृक्षारोपण की जो डिस्टेंस है,
2: पेड़ से पेड़
1: की दूरी, पेड़ से पेड़ की दूरी हमको उत्तर से दक्षिण की ओर रखनी है और कतार

0: कतार से कतार की दूरी का ध्यान हमको पूरब से पश्चिम की ओर रखना है, जिससे कि जो प्रकाश है वो बराबर मात्रा में आपके फसलों को और साथ ही साथ वृक्षों को मिलता रहे, और उनकी जो दूरी है, जो आपका इम्प्लीमेंट है यानी आपके कल्टीवेटर है या सीड ड्रिल है या हैरो है, जो भी आप उसमें उपयोग में लेते हैं, उससे 2 या 3 फीट आपको ज्यादा रखनी है कतार से कतार के बीच और वृक्ष से वृक्ष के बीच, ताकि आप जो भी आपके कृषि कलाप क्रियाकलाप हैं वो निरंतर आप उसमें कर सकें और वृक्षों को हानि ना हो।
1: आपने एक उदाहरण ये दिया और एक बागड़ का दिया, तीसरा आपने बताया था कि आप सघन अगर वृक्षारोपण करना चाहें।
0: यदि आप सघन वृक्षारोपण करना चाहते हैं, अब वो फलदार वृक्ष के लिए भी हो सकता है, जल लकड़ी के लिए भी हो सकता है, तो उसमें क्योंकि जो कैनोपी है, छादन है जो वृक्ष का, ऊपर की छाया यदि ज्यादा हो जाती है और वो 3-4 वर्ष में ज्यादा हो ही जाएगी, तो उसमें हम सिर्फ ऐसी फसलों का चयन कर पाएंगे जो कि जो छाया है उसको प्रिय हो, जैसे कि हमारी हल्दी है, अदरक है, कुछ हद तक हमारी आलू है, तो ये हम वहां पर उनके बीच में ले सकते हैं।
1: और वो जो सघन वृक्षारोपण के वृक्ष होंगे वो कौन से होंगे?
0: वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आप अगर फलदार वृक्ष चाहें तो भी हो सकते हैं, और यदि आप वानिकी वृक्ष चाहें कि जैसे खमेर जो जल्दी वृद्धि करता है, सागौन भी आप ले सकते हैं, ये आप वहां पर शिवपुरी के दृष्टिकोण से आसानी से ले सकते हैं।
1: आपने अपनी बातचीत में बताया था कि हमें उन पेड़ों से फल भी मिलेंगे और लकड़ी भी मिलेगी, लकड़ी की बात पर वन विभाग का नियम आ जाता है कि आप पेड़ को काट नहीं सकते, तो इस तरह के कोई पेड़ में अलग अलग विभाजन किया गया है कि इन पेड़ों को काटा जा सकता है और इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता?
0: जी नहीं, भारत में 2014 में एक पॉलिसी आई थी, कृषि वानिकी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत यदि आप रजिस्ट्रेशन DFO के यहाँ कर देते हैं कि मैंने इतने वृक्षों का इस प्रजाति का वृक्षारोपण किया है, तो आप उसको काटने के लिए फ्री हैं, और आपको उसको बस ये बताना होता है कि हमने वहाँ काट दिया है, और वो जो लकड़ी अगर आप अच्छी क्वालिटी की है जैसे सागौन है या खमेर है, तो उसका जो बिकने का या बेचने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है, आप उसको डायरेक्ट बाजार में नहीं बेच सकते हैं, वो आप डिपो में देंगे और डिपो के द्वारा वन विभाग वाले उसको बेचते हैं, उसका कुछ कमीशन या परसेंटेज वो लेते हैं और बाकी की रकम आपको दे दी जाती
1: है। यानी कि वो भी काटी जा सकती है, निश्चित प्रक्रिया की जाए, DFO क्या उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, तो फिर हम उस इमारती लकड़ी को काट सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं।
0: जी
1: कुशवाहा साहब, आपने एक तरह से 3 तरह के वृक्ष बताए शिवपुरी में मॉडल के तौर पर, एक तो बागड़ के लिए जिसमें खास तौर पर आपने बांस का जिक्र किया, बीच में करौंदे का जिक्र किया, फसल भी लेनी है और पौधे पेड़ भी लगाने हैं तो फिर आम अनार इस तरह के आपने संतरा लगाया जा सकता है, और सघन है, सघन में कोई भी वृक्ष लगाया जा सकता है, खासतौर पर सागवान है, आम है, नींबू है, इस तरह के लगाए जा सकते हैं। काटने की प्रक्रिया अलग अलग है कि सरकार के मतलब आपको वन विभाग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को आपको ये सूचना देनी है, फिर आप उसे काट सकते हैं। इसके अलावा परिवेश बहुत बदल रहा है, साइंटिस्ट खासतौर पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं और नए नए तरह के प्रयोग कर हर जगह पर हर चीज उत्पादन के लिए मदद कर रहे हैं, तो शिवपुरी जिले में जो वृक्ष आपने बताए हैं वो तो सार्वभौमिक हैं, सबको पता है, लेकिन अगर संतरा जिसका नाम शिवपुरी जिले में उतना नहीं है जो दूसरे इलाके की फसल है, तो इस तरह के पौधे भी क्या शिवपुरी में बढ़ाए जा सकते हैं, उनका लाभ लिया जा सकता है?
0: जी, संतरे को छोड़कर साइट्रस कुल के ज्यादातर पौधे या पेड़ हम या वृक्ष हम कृषि शिवपुरी दृष्टिकोण में ले सकते हैं, लेकिन संतरा क्या है, उसको थोड़े आर्द्रता की जरूरत होती है क्योंकि उसमें मिठास आने के लिए, और उसकी जगह आप किन्नो ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, लेकिन संतरे की रिकमेंडेशन अभी शिवपुरी जिले के लिए नहीं है क्योंकि उसमें वो मिठास नहीं हो पाती है यहाँ के परिवेश में, इसलिए मैं भी उसके लिए
1: अमरूद
0: बहुत अच्छा होता है, इवन ग्वालियर 27 एक प्रजाति है जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है, वो बहुत अच्छी स्वादिष्ट भी है और उसका फल का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि यदि अमरूद पर कोई जाना चाहे तो ग्वालियर 27 वैरायटी शिवपुरी जिले के लिए बहुत अच्छी।
1: तो नीरज कुमार कुशवाहा जी, आप हमारे किसानों के बीच में रहे और शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल, इस विषय पर एक अच्छी बातचीत हुई और एक अलग हटकर बातचीत हुई कि हम खेती की बहुत सारी बातें करते हैं, रबी की खरीफ की बातें करते हैं, लेकिन वानिकी पर एक अलग तरह का प्रयोग कर हमारे किसान दुगनी इनकम कर सकते हैं, अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं, और इसमें एक बात और होगी, पेड़ों से जो पत्ते गिरेंगे वो खाद का भी काम करेंगे।
0: जी, ह्यूमस भी बढ़ेगा उससे, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और आपके जो पत्ते वगैरह और निकल रहे हैं, यदि आप बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बना रहे हैं या

0: अडेप बना रहे हैं, तो उसमें जो आपको मटेरियल लगेगा वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्द हवाएं चलती हैं, तो अगर आपके पेड़ लगे हुए हैं मेड़ों के चारों ओर, तो सर्द हवाओं से भी बचता है, आपकी फसल को बचाता है, जिसको हम विंड ब्रेक कहते हैं। और यदि कतारें लगी हुई हैं मेड़ें, अगर आपकी काफ़ी चौड़ी हैं, 3-4 मीटर की मेड़ है, तो आप उसमें 2-3 कतार अगर वृक्षों की लगा देते हैं तो और भी अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, जिसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं,
1: यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो बहुत अच्छी और सारगर्भित बातचीत हुई, कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान जो उसको सुन रहे हैं वो अवश्य फायदा लेंगे, और जरूरत पड़ने पर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। किया जा सकता है सर?
0: जी बिल्कुल,
1: संपर्क किया जा सकता है, ताकि आप अतिरिक्त आमदनी बढ़ा सकें। श्री नीरज कुमार कुशवाहा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मेरी बहनों, अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता सिपरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वाहन की मॉडल। वार्ताकार रहते नीरज सिंह कुशवाहा, उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो बाकी में भाई बहनों, कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी जानकारी बताई, और हम भी आपसे कहेंगे कि एक ही खेत में फसलों के संगे उपयोगी पेड़ पौधों को वैज्ञानिक तरीका से रोपण करना, यानी खेत में अनाज, दलहन, तिलहन या कोनो सब्जियों के संगे ऐसे पेड़ लगाना जौन भविष्य में लकड़ी, फल, चारा, ईंधन या और उत्पाद देखे हमें अलग से आय दें। तो भैया, आज खेती अपन देखें तो अपने कई चुनौतियों को सामना कर रही है, जैसे कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बारिश को कोई समय नहीं है, अनियमित हो रहा, मिट्टी की उर्वरकता में कमी बढ़ती बढ़त वही लागत, हमारे किसान भैयाओं को चिंता को विषय बन जा रहा है। तो ऐसे समय में कृषि वाहन की वाकई में एक ऐसा विकल्प है जो उन खेती को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित और लाभकारी बनाऊत है। तो निश्चित रूप से जा भेंटवार्ता से आप जरूर लाभ लेंगे। और भैया, आगे चर्चा और भी करेंगे, पर से पहले हम आपको एक लोकगीत और सुनवा रहे हैं, तो सुने आप जो लोकगीत, जीवन है 2 दिन का, और सुने जी आप जो लोकगीत।

या वाकई अभी आपने सुना जो लोकगीत जीवन दो दिन का श्रीमान, बाकी मत मर मत कर मान गुमान, जीवन का कोनो भरोसा नहीं है, इसलिए जैसे हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि दूसरों की भलाई के काम में आए और अपने गुमान नहीं करना चाहिए। और भैया जो लोकगीत के गायक कलाकार रहते बाल कृष्ण जी, और आगे भैया जैसे कि अपन बात कर रहे थे स्वच्छ शौचालय का करें प्रयोग, भैया मैंने स्वच्छता केवल घर तक ही नहीं हो, सफाई घर तक ही सीमित नहीं होते, खुले में शौच अपन जो करते हैं तो शौचालय का उपयोग करवे के बाद बाय खुले में शौच न जाए, अपन शौचालय का उपयोग करें, और शौचालय का उपयोग करवे के बाद बस बाय साफ नहीं रखते हैं तो कई बीमारियों का जो अपन निमंत्रण देते हैं। जैसे भैया हर एक भैया बहन को जो अपनों कर्तव्य है कि स्वच्छ शौचालय को नियमित उपयोग करें और बाहर साफ सुथरा भी रखें। खुले में शौच करवे से अपन देख रहे हैं कि कई बीमारियां देखने में आउत हैं, जैसे कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पेचिस जैसी कई गंभीर बीमारियां फैलत हैं। भैया गंदगी की वजह से मक्खियां और मच्छर तो पनपते ही हैं और जो संक्रमण फैलावे को काम करते हैं, और वही स्वच्छ शौचालय का अगर आप उपयोग करवे से हमारा परिवार स्वस्थ रहते हैं और आसपास को वातावरण भी बढ़िया साफ रहते हैं। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश भर में लाखों शौचालय बनवाए हैं, पर अकेले शौचालय बन जानो ही मुलक नहीं है, उनको रोजीना सही उपयोग करवो भी बेते कई जरूरी है। भैया बहनों अपन देखते हैं कि महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लाने घर में शौचालय हो वो बहुत जरूरी है, जैसे कि बिन काजे ना तो संजा के अंधेरे होवे को इंतजार करना पड़त है और ना ही बुरबरे में जल्दी जावे की जल्दी रहते है। तो शौचालय को स्वच्छ रखने के लाने कुछ जरूरी बातों को भी अपन ध्यान रखें, जैसे कि रोजिना शौचालयों की सफाई करें, बढ़िया से पानी डालें, हाथों काजे साबुन से धोएं और बच्चों काजे शौचालय के उपयोग करवे की

किलोमीटर प्रति घंटा और मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 57%। ये तो भैया हो मौसम की जानकारी की बात, और चलत चलत हम आपको कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी दे देते हैं। तो कल कौन कौन से अपने कार्यक्रम रहेंगे भैया? तो कार्यक्रम में जो विषय रहेंगे, बाकी हम बात कर रहे हैं, तो चौपाल में कार्यक्रम के विषय रहेंगे स्वच्छता और हमारा पर्यावरण, जल संवर्धन की आधुनिक विधियां अपनाएं, और कार्यक्रम किसानवाड़ी में चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन और मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय। और भैया जैसे कि हम हमेशा कई बार आप किसानवाणी कार्यक्रम गांव में सुनवाते रहते हैं, तो कल सुनवाएंगे आपको किसानवाणी गांव में किसान के साथ स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम बमरा विकास खंड एवं जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग। असाइनी प्रस्तुति सहयोग श्री मोहन सिंह यादव और प्रस्तुत कर श्री विनोद कुमार त्रिपाठी। तो भैया ऐसे ही हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और जी बात सिंह दीजिए, अपने रूपेश भैया को कार्यक्रम चौपा।

0: पेंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाए, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया और जो पुराना स्टेटस को था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहां तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पर बहरीन और कुवैत में। तो इस सबसे सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
1: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
0: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है।
1: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
0: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहां काम करते हैं, वहां से रिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-20% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता।
1: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य?

0: है।
1: नहीं नहीं वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और देखिए इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
2: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है, और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
1: देखिए हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, और कोई मुश्किलात है उनको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती है कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कायम रहे।
2: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें, ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
1: देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए, लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीजन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए, क्योंकि देखिए अगर कोई जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसे है। और इसके साथ साथ देखिए ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं, तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया, क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
2: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही होना इसमें चाहिए?
1: देखिए भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
2: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है, तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा कहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है तो सबका नाक पे दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रूल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन ट्रेन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है, तो साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हों कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को यह संदेश गया है कि देखिए, आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
2: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रख करके हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
1: देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए, गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपेक्टेड कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे कल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पे कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहां पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट है, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्री कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब लड़ाई पर।
2: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Sena.
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हीर रांझा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है कैफी आज़मी ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेश का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए सुनते हैं संजोग फिल्म में लता मंगेशकर को। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

आप आए बाहर आई कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। इसके लिए आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया

0: था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,400

0: और 18 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है। अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 200

$32 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच

से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहिदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमूई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सारफीन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहदे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकिरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजादाना तिजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती ताउन को मजीद वसत देने के तरीक़ेकार पर गौर वखौज़ किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रुकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से ये साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमू बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमू बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इसी तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया।
وزارت نے مزید بتایا

0: 60 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
1: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रास्ते के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहराह पर कार का टोल टैक्स 275 रुपए होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मसनूई जहानत, एआई पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निजाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मजबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहराह 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकतदारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह मुक्केबाज 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांस्य का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तजारती लिहाज से मौसर तजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रमा माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ते साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: नमस्कार, श्रोताओं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा नमस्कार श्रोताओं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद मैडम।
4: श्रोताओं स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सचेंजर @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
5: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितने हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
4: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी अपना सवाल पूछिए।
6: हाँ जी नमस्कार मैम।
4: नमस्कार
6: जी और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: हाँ सर आप कैसे हैं सर?
5: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
6: जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
5: रवि जी आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था।

0: यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम सभी के हम लोग, आप रवि जी कहाँ रहते हैं, आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे
1: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
0: ओके, तो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी बढ़ता एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके, ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
1: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर। तो
0: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारी छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही हो वे फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इन चीज़ों पर, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जैसे सरकार की तरफ से कुछ, जैसे कैसे अभी घर सूर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने

0: अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: जी,
0: तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बानस का आठा का एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी
0: प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आमतौर पे जो फिल्टर छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर देयर इज नो डिफरेंशिएशन, लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और

0: खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: इसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार रमाकांत जी।
1: नमस्कार
2: रमाकांत
1: जी। नमस्ते।
2: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल रिस्टार, कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
0: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
1: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपना एक एक पैसे डालते हैं,
0: बच्चे डालते हैं,
1: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
0: हर बूंद कीमती है।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331-4812-37171-7 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमन जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
1: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए, ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार हो, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
0: स्तर
1: ऊपर हो जाए।
0: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी जो इसको हम 2.0 कहते हैं वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 में अभी 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे वहां की जनता ने वहां के क्राउड ने वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने वहां की इंडस्ट्री ने वहां के एनजीओज ने सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफटॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। 1 करोड़ का टारगेट हमारा हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी नॉन गवर्नमेंटल ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी कहते ना कोई भी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए कैसे इसकी जन ओनरशिप कम्युनिटी ओनरशिप हो ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले के कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का बिकॉज आप शिमला ही के लिए नहीं ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया बर्फ बन गई और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो लद्दाख हो सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार। मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न था जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी इसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली से चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं, उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें। आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsatalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनक लता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: आकाशवाणी को
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

वो कौन थी? इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में है, कवि प्रदीप का लिखा हुआ। संगीत निर्देशक हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है संबंध।

मुकेश और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म संबंध में। अब हम आपको सुनवाते हैं कैफी आजमी का लिखा हुआ गीत, मदन मोहन का संगीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म संगम से, आवाज मुकेश की है, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

की आंखें। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात के 10:30 बजे हैं राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों

0: इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership.